0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है.
0: الرحمن علم القرآن.
1: अल्लाह जो निहायत मेहरबान उसी ने कुरान की तालीम फरमाई.
0: خلق الإنسان علمه البيان.
1: उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: कुल्लू मन अलैहा,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

इनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने।

0: वीडियोस यूट्यूब पे इतना देखते हैं कि उनको खबर भी नहीं होती, ये कई कई घंटे गुजर जाते हैं। नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की रील्स देख रहे हैं, और भी जो लोग हैं किसी भी तबके के हों, वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस हैं, हर किस्म के वीडियो, जिसमें फहाशी भी है, जिसमें जो है वो इसमें रूहानी जिसे कहते हैं कि आपके तकलीफ़ें उसके अंदर ज़्यादा हैं देखने में, क्योंकि वो अपने आप को उसमें देख के फिर तकलीफ़ में आते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, हमारे पास ये गैजेट्स नहीं हैं, हमारे पास ये दौलत नहीं है। तो वो या क्रिकेट की दुनिया है, उसमें इतनी रील्स आती हैं कि आप कई कई घंटे क्रिकेट की ही रील्स देखते चले जाते हैं। तो बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, माएँ हों, औरतें हों, बहनें हों, उनके हिसाब से डिजिटल दुनिया उनको क्यूरेट करके दे रहा है, यानी उनके मुताबिक उनको खाना परोस रहा है, जिसे हम डिजिटल फूड कहते हैं, कि जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए वैसा मवाद तैयार हुआ है कि जो उसको स्क्रॉल करता चला जा रहा है और वक्त बर्बाद होता चला जा रहा है। और ये इतना एडिक्शन बढ़ जाता है कि अगर बच्चों से मोबाइल छीन लिए तो वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और उनकी ख़राब वही फूड हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नौजवान, मैंने खुद ये अपने कानों से सुना है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी अभी 18 साल का बच्चा जो आया है, ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट करने के बाद आया है, वो यानी परेशान है, आंखें यानी वो कह रहा है कि मुझे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कुछ मैं देखा करता था वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मकसद है स्टडी करना, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व्ड है कि अब उसको वो दुनिया बेहतर और अच्छी लगती है और रियल दुनिया अच्छी नहीं लगती है।
1: ठीक है, आपने यहाँ पे तस्करा किया स्टूडेंट्स का और छोटे बच्चों का।
0: जी
1: अगर आप देखें तो इसमें यानी ये एडिक्शन ऐसा है कि
0: जी
1: यहाँ पर वो बच्चा तशद्दुद और वायलेंस की हद तक पहुँच जाता है। मैंने एक रील देखी थी,
0: जी
1: सॉरी एक क्लिप देखी थी, वीडियो क्लिप देखी थी, और वो यूट्यूब पे मौजूद, बहुत सी इस तरह की क्लिप्स मौजूद हैं कि एक माँ है जो देखती है अपने बच्चे को कि वो मोबाइल देख रहा है, और वो आती है उसके मोबाइल बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लेती है।
0: जी
1: अब वो उस पर शायद वीडियो देख रहा है या गेम खेल रहा है, वो सीसी कैमरे फुटेज उसमें है।
0: हाँ।
1: उसमें दिखाते हैं कि गुस्से में छीन लेती है और उसके बाद माँ बैठ के खाना खाने लगती है।
0: जी
1: बच्चा उठ के जाता है कहीं से, वो बैट लेके आता है और सीधा माँ के सर के ऊपर वार करता है, इतना शदीद वार होता है कि माँ की मौत हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वो गिर जाती है वहाँ पर, बच्चा उस मोबाइल को लेता है और देख फिर से देखने लगता है।
0: जी
1: इस हद तक तो ये कंटेंट ऐसा बना रहे हैं जिसमें वायलेंस है, जिसमें फहाशी है,
0: जी
1: जिसमें जो है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इसमें इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक तरीके से इनहितात का शिकार हो रही है।
0: जी
1: ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जो सवाल पैदा होता है कि इसके क्या मनफी असरात हमारे जवानों के ऊपर खुसूसन हो रहे हैं?
0: नुकसानात हो रहे हैं, उनमें से सबसे अहम जो नुकसान दिखाई देता है वो है वक्त की बर्बादी, यानी टाइम को किल करना। एक तरफ हम सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया या इसकी लत जो है वो वक्त को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, कि वो ख़ास वक्त जो नौजवान को ख़ुद अपने ऊपर वर्क करने पे लगाना चाहिए था या अपनी स्टडीज़ में लगाना चाहिए था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वो उसका वक्त जो है वो रील देखने में और स्क्रॉल करने में और यूट्यूब वीडियोज़ देखने में सर्फ हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है वक्त की बर्बादी के साथ जब आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं, तो मॉडर्न जो हमारे पास साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हैं, और ये इंसान अपने तजर्बे से भी देख सकता है कि ऐसा बच्चा, उसके अंदर इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बदमिजाज बदखू होने लगता है। आप जैसे आपने मिसाल दिया मोबाइल छीन लिया, या माँ बाप ने कहा कि नहीं बस ज़्यादा मत देखो, तो वो चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल ये रिसर्च आज की से सपोर्ट कर रही है कि वक्त की बर्बादी के साथ साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंसान के टेम्परमेंट पे असर डालता है।
1: सही, तो एक नुकसान हुआ वक्त बर्बादी।
0: जी
1: एक नुकसान हुआ इंसान की ज़हनियत के ऊपर असर। वक्त की बर्बादी के सिलसिले में कुरान, रवायात, अहले बैत अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ हमको क्या कहते हैं अखबार मिल जाते हैं, अखबार जर्रीन मिल जाते हैं अलैहि वसल्लम की, बहुत मशहूर मौलाए कायनात का कौल है कि इन तहु या फन तहु फुरसल खैर, के अपनी जो खैर की जो वो जो फुर्सत की घड़ियां हैं उनको तुम गनीमत
0: जानो। हाँ, जी,
1: या जो है वो कहते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इस तरीके से गुजर जाती हैं जिस तरीके से बादल गुजर जाते हैं।

0: बिल्कुल तुम
1: जी
0: हाथ मलते रह जाओगे कि
1: हाँ
0: मैंने अपनी ज़िंदगी में
1: बेशक
0: कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है वो इंसान की तरक्की में एक जो चीज़ होती है वो इंसान की सोच होती है, इंसान की ज़हनियत होती है, वो चीज़ जो इंसान को जो है वो इंसान बनाती है, वो चीज़ कि जो इंसान को एक आम इंसान से एक इलीट बनाती है,
1: जी
0: वो उसकी
1: जी
0: सोच होती है, उसके
1: सोच है
0: जहन होती है,
1: जी
0: उसके फिक्र करने की सलाहियत होती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये दूसरा नुकसान हुआ कि
1: हाँ
0: ज़हनियत जो है वो ख़राब होती है।
1: जहनीयत
0: तीसरा
1: खराब हो
0: क्या
1: जाती
0: नुकसान हो
1: है,
0: सकता है?
1: ये उसके मिजाज पे उसका असर पड़ रहा है। अच्छा जहनीयत के जाविये से देखिए तो आपने वायलेंस का जिक्र किया, मैंने खुद इस बात को देखा है कि यूट्यूब में जो बच्चों के जो वीडियोस आ रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ये जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गोर और ब्लडशेड वायलेंस मारपीट,
0: जी
1: ये इसका उनसुर इसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा अब वीडियोज़ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, और बच्चे उसको देखने के बाद फौरन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो किसी को मारेंगे जाके, वो अगर ज़रा सी कोई बात उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हुई तो फौरन वो उठा लेंगे तलवार, या
0: रिएक्ट
1: वो कोई
0: करेंगे।
1: रिएक्ट करेंगे, या आपने उनको टॉय गन ला के दिया, वो टॉय गन आप ही पे ताने हुए है वो, यानी वो जो देख रहा है जहन उसका वो डिजिटल दुनिया मोड़ रही है कि तुम ऐसे ही बनो। इससे एक और चीज़ सामने आ जिस पर इंशाल्लाह हम बात कर सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है कि खुद वो अपनी खुदी वो खुद है क्या, तो वो अपने को उधर से बनवा रहा है कि वो जो दुनिया हमसे कह रही है हमको वही बनना है,
0: फेक वर्ल्ड जो
1: फेक
0: है
1: वर्ल्ड, वहाँ हाथ में गन है, वहाँ बंदूक है, वहाँ टारगेट दिया जा रहा है कि ये एनिमी है, इनका खून बहाओ, इनको मारो। तो ये जो टारगेट ओरिएंटेड जो दुनिया है ये उसके ऊपर भी असर कर रही है
0: यानी वो
1: क्लासरूम
0: अपने
1: में
0: अपने को उस दुनिया की मखलूक समझ रहा है।
1: जी, ये है, यानी वो ये जिसे आप कहते हैं ना कि आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हम पढ़ाते हैं अपने क्लास में लिटरेचर में, ये आज की डिजिटल दुनिया पे सादिक आ रहा है कि आप जानबूझ के अपने को ये बता रहे हैं कि वो जो है वो है तो फेक, मगर हम थोड़ी देर के लिए उसको सही समझ रहे हैं और उसी का पार्ट अपने को समझ रहे हैं,
0: ठीक
1: तो फिर आप रियल लाइफ से डिसकनेक्ट हो जाते हैं।
0: सही
1: अच्छा क्लासरूम में क्या हो रहा है, बच्चों की रिपोर्ट्स है आप ऑनलाइन देखिए कि बच्चों के अंदर इरिटेशन जो है चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है छोटे बच्चों के अंदर, यानी DU की जो है सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है और जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को क्यों छोटे बच्चों के लिए आपने रखा हुआ है, क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड के बच्चे को को जो है वो ज़रूरत है नफ्सियात की कि उसका इलाज किया जाए। ये चीज़ें जो हैं ये उसके जहनीत को बिगाड़ रही हैं, उसको एक फेक दुनिया में ले जा रही हैं, उसकी अखलाकियात पर बुरा असर डाल रही हैं, और वो अपने घर के अफराद से डिसकनेक्ट रहता है और ऑनलाइन दुनिया से कनेक्टेड रहता है।
0: यानी घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, लेकिन वो घर में रह रहे हैं,
1: घर
0: किचन
1: में
0: के
1: रह रहा
0: नीचे
1: है
0: रह रहे हैं,
1: हाँ
0: लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, और वो उस मोबाइल से
1: मोबाइल से
0: कनेक्ट
1: हैं
0: है। यहाँ पर ज़्यादातर जब हम डिजिटल एडिक्शन की बात करते हैं
1: जी
0: तो ज़्यादातर जो गुफ्तगू होती है वो स्टूडेंट्स जवानों और बच्चों की होती है।
1: जी
0: दूसरा तबका जो हमारे समाज का है, घर की ख़वातीन,
1: खवातीन जो हैं
0: वालदैन, उनके बारे में
1: हाँ
0: क्या कहेंगे आप?
1: उनके बारे में, यानी इस बीमारी ने या इस वायरस ने उनको भी टच किया हुआ है और उनको भी मुतासिर किया हुआ है। मसलन खवातीन के बारे में जो अब एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि इतने ज़्यादा रील्स जो हैं वो उनको भी अपनी तरफ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनके बैकग्राउंड के एतबार से उनके इंटरेस्ट के एतबार से डिजिटल दुनिया उनको वो रील दिखाती है, कॉस्मेटिक्स की रील उनको दिखाएं, ब्यूटी कॉन्शियसनेस उनको बनाया जा ब्यूटी कॉन्शियस उनको बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के अगर कहिए कि खाने और पकवान ही वाले हैं तो उसमें भी वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती हैं जिससे वो उनके और काम मुतासर होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि चलिए खाने पीने को सीख रही हैं कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वक्त का ज़या यूं हो रहा है कि बेहुदा ड्रामे और बेहुदा रील्स और बेहुदा बातें उनके जहन के अंदर डाली जा रही हैं, झूठे कंपैरिजंस, झूठे ब्यूटी के स्टैंडर्ड उनको दिखाए जा रहे हैं, सास बहू के झगड़े उनको दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कि देखो आज़ाद औरत वो होती है कि जो अपने औरत अपने शौहर की बिल्कुल इज्जत नहीं करती है बल्कि शौहर उसके कदमों में है, इस तरह की बातें उसको बताई जा रही हैं, या उसको फेमिनिज्म का ओवरडोज दिखाया जा रहा है कि तुम किसी की मातहत नहीं हो बल्कि तुम खुद मुख्तार हो और शौहर तुम्हें तुम्हारा वली नहीं है बल्कि वो तुम्हारे जेरे निगरानी है, इस तरह की बातें जब आप दिखाएंगे और बाहर की रील औरतों को दिखाएंगे तो यहाँ की और डोमेस्टिक जो लाइफ है उस पर बड़ा असर पड़ता है।
0: जी, अभी आपने यहाँ पे बात की मसलन ख़वातीन जो हैं वो
1: जी
0: मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रही हैं, यहाँ पे

0: वो उनको दिखाया जा रहा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हारा फिगर कैसा होना चाहिए,
1: ये तो पूरा फिजिकल
0: तुम्हारे बाल
1: एट्रीब्यूट्स।
0: कैसे होने
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंस्टाग्राम,
1: जी
0: दो तीन साल पहले की रिपोर्ट है
1: जी
0: कि इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने बाकायदा कोर्ट में उनको बुलाया गया, इनके जो को फाउंडर हैं,
1: जी
0: मैं जहन में नाम मेरे नहीं, इंस्टाग्राम को जो को फाउंडर है, और इन लोगों को बुलाया गया कोर्ट में बाकायदा। जिसमें से एक सवाल इसमें ये है कि इंस्टाग्राम पर जो है वो एक खातून, एक लड़की जो अभी टीन एज है, ठीक है, टीनेजर है वो, और वो मिसाल के तौर पर उसका जो बदन है वो थोड़ा हेल्दी है, मोटी है,
1: जी
0: वो अपने आप उसको ये बताने के जहन में डाल दिया है कि अगर तुम मोटी हो तो तुम अगली हो, ठीक है, और तुमको रहना कैसे है, तुमको रहना है बार्बी डॉल की तरह से,
1: सही
0: उसके जो बाल हैं वो
1: जी
0: सुनहरे हैं, उसका जो फिगर है
1: जी
0: वो ऐसा, अगर तुम ऐसी नहीं हो तो तुम खूबसूरत
1: नहीं
0: नहीं हो। यानी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर दी गई है, और वो वैल्यूज़ इंसान के जिस्म और फिगर में आ गई है,
1: बेशक
0: जबकि दीन इस्लाम वो जो दीनी इलाही अकदार हैं वो ये हैं कि तुम्हारी जो हैसियत है, तुम्हारी जो वैल्यू है, वो तुम्हारे अच्छे अमाल की वजह से है, तुम्हारे तकवा की वजह से, मेरिट के ऊपर है,
1: मेरिट के ऊपर अखलाक है
0: तुम्हारा
1: तुम्हारा।
0: अखलाक है, तुम्हारी एजुकेशन है,
1: जी
0: तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, तुम
1: जी
0: समाज के लिए, तुम माशरे के लिए किस कदर कारमंद हो।
1: सही
0: लेकिन आज एक लड़की जो है वो उसका सारा हमागम ये है कि मेरा मैं दिखने में कैसी
1: ये
0: हूँ।
1: नहायत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने जिक्र किया है। ये इंस्टाग्राम पर आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, और इससे मुताल्लिक बास किताबें भी इस वक्त हैं कि जो दिखाती हैं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या है नौजवान की वेलबींग पर, जिसमें एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। एक किताब है, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, नौजवान चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, द ब्यूटी मिथ के नाम से एक किताब है, जिस पर हम लोगों ने बहुत पहले उसको पढ़ा था। उसमें भी इन्हीं बातों को पेश किया जा रहा है कि ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है और ये जो फैशन इंडस्ट्री है, ये आपके सामने फॉल्स स्टैंडर्ड दिखाती है कि असल में मेयार ये है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। अब जो मुख्तलिफ किस्म की जब इमेजेस आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं और रील्स देखते हैं, तो उसमें जो खूबसूरती दिखाई जा रही है, जो कि बाकायदा फिल्टर्ड है, उस पे फिल्टर्स लगाए गए हैं, उसको ख़ास तौर से बनाया गया है कि वो बहुत खूबसूरत लगे, इंसान उसको देख के, बिलखसूस जो लड़कियां हैं जैसे आपने जिक्र किया, वो उसको देख के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, और ये कॉम्प्लेक्स इतना गहरा हो जाता है कि उनको लगता है कि अगर हम इस तरह के नहीं हैं तो फिर हम बदसूरत हैं,
0: ये हम अच्छे ही नहीं है,
1: या
0: या
1: हम
0: मेरी पर्सनालिटी अच्छी
1: यानी
0: नहीं है।
1: हमारी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि असल में वैल्यू दीन के मुताबिक आपकी रूह और आपकी बातिन के अंदर जो कमाल है उसकी है,
0: ना फकत दीन के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक,
1: अकल के मुताबिक भी।
0: दीन और अक्ल में
1: जी
0: कोई तजाद नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि जो हुक्म दीन दे रहा है वो
1: वही
0: ऐन अक्ल के मुताबिक है,
1: बेशक
0: और जो चीज अकलानियत है दीन उससे कभी इनकार
1: इनकार नहीं
0: नहीं
1: करता है,
0: करता है।
1: बेशक
0: यहाँ पे एक बात आपने कही गेमिंग के हवाले से,
1: जी
0: यह मुकम्मल तौर पर कंडीशनिंग की गई है लड़कियों की
1: जी
0: कि तुमको खूबसूरत दिखना है तो ऐसा होना चाहिए,
1: ऐसा
0: और
1: होना चाहिए
0: ये चीज़ जो है कुरान जो इसकी तरफ इशारा करता है, वो बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान करीम की, मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में मफहूम उसका पेश करूँ,
1: जी
0: शायद ज़य्यना लहुमु शैतान का लफ्ज़
1: इस
0: इस्तेमाल हुआ है
1: इसी तरह
0: कुरान
1: कुछ
0: करीम
1: आया
0: में
1: है जी
0: ज़ाहिरन,
1: जी
0: कि शैतान का जो एक काम होता है वो तुम्हारे लिए
1: जी
0: वो दुनिया को खूबसूरत सजा के पेश करता है, और वो
1: हाँ
0: तुमको बताता है कि हकीकत
1: जी
0: ये है तुम्हारे लिए,
1: हाँ
0: बिल्कुल बेहतर नहीं है। अरे अगर आज से 20 साल 25 साल पहले कोई इस आयत को जो है वो पढ़े या उसको समझने की कोशिश करे, शायद बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो ये आयत एग्जैक्टली बता रही है कि किस
1: बेशक
0: तरीके से इंस्टाग्राम, किस तरीके से सोशल मीडिया वो तुम्हारे सामने, शैतान दुनिया को तुम्हारे सामने सजा के पेश कर रहा है, और तुमको उस हकीकत से निकाल रहा है बाहर कि तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है,
1: जी
0: तुम्हारा सामना, तुम्हारा जो जो क्या कहते हैं अपीयरेंस है
1: हाँ वो मैटर
0: वो
1: करता है,
0: मैटर
1: यानी
0: करता
1: एक
0: है।
1: इल्यूजरी दुनिया, एक इल्यूजन
0: एग्जैक्टली
1: की तरफ आपको लेके जाना।
0: जी
1: गालिबन अगर मैं एक जुमला और ऐड करूं कि यही एक मतलब हम वहां से भी निकाल सकते हैं कि नूर से जुलुमात की तरफ जाने का जो सफर है,
0: जी
1: हम इस दुनिया में भी देख सकते हैं
0: बेशक
1: कि
0: बेशक
1: हकीकी दुनिया से गैर हकीकी और बनावटी दुनिया की तरफ सफर करवाता है
0: बेशक,
1: ये डिजिटल एडिक्शन।
0: ये एक बात है।
1: जी
0: ओवरऑल डिजिटल
1: जी
0: एडिक्शन जो है वो
1: जी
0: सोशल मीडिया की रील के बारे में आपने बयान किया, गेम के बारे में अगर हम देखें,
1: हाँ
0: जब गेम का तस्करा आता है तो
1: जी
0: फिर उस वक्त हम फिर वही बात जाती है बच्चों की तरफ,
1: बच्चों की तरफ
0: क्या ये
1: जाती है,
0: बच्चों से मखसूस है?
1: बच्चों से मखसूस नहीं है बल्कि नौजवान, बल्कि हर उम्र का, यानी हमने खुद आप अगर सर्वे

0: वे करें तो 40-50+ वाले भी गेम खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़कत जो है वो 5 साल का बच्चा गेम खेल रहा है। भाई ये जो प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं इतने मशहूर है कि बड़े बड़े लोग खेलते हैं, हमारी उम्र के बच्चे के लोग भी जो हैं वो जो जो जवान हैं वो भी खेलते हैं। प्ले स्टेशन 4 है, एक से एक हाई डेफिनेशन के गेम्स हैं। मैंने खुद देखे हैं बाज़ गेम्स कि उसमें, यानी गेम तो ये है कि चलिए आपको एक आपको एज एन AI जो है उसमें वो काम खो रहा है कि आप एक वो हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपको फला जगह जाके जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके मेन एनिमी को जाके मारना है, लेकिन आपके साथ एक औरत को लगाया गया है जो नहायत खूबसूरत औरत है और AI ने उसको क्रिएट किया हुआ है। उसके खदोखाल जो हैं वो आपको बाकायदा दिखाई दे रहे हैं, गो के वो कपड़े पहने हैं, लेकिन वो इतनी जाजिब नज़र है कि जब वो नौजवान उसको देखेगा तो उसकी वजह से वो गेम खेल रहा है। अच्छा, अब इससे देखिए, इसी में एक बात और आती है साइकोलॉजी की दुनिया में, डोपामाइन इफेक्ट एक थ्योरी है कि ये जो चीज़ है ना कि आपके आपको पहले दिखाया कि तुम इतने अहम हो कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुमको मिला है, तुमको एक ख़तरनाक दुश्मन को कत्ल करना है, तुम्हारे पास ख़तरनाक हथियार हैं और साथ में तुम्हारी एक एजेंट भी है जो नहायत खूबसूरत है, जो तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहेगी। तो आप अपने को एक सुपर हीरो समझ रहे हैं, एक एजेंट समझ रहे हैं जिसके बड़ी ताकत है, साथ में खूबसूरत ट्रॉफी भी आपके साथ है। डोपामाइन जो है वो आपका जो हार्मोन है वो आपको प्लेजर की तरफ उभारता है कि इससे आपको एक फिजिकल और एक लस्ट वाला सुकून भी मिल रहा है, एक प्लेजर मिल रहा है कि इतनी खूबसूरत लड़की आपके साथ है, प्लस आप एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि आप नेक्स्ट स्टेज आपके लिए खुल जाएगी,
1: जबकि
0: बिल्कुल बिल्कुल अलग है बात। इसमें इतना गेमिंग में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको वही दुनिया पसंद आती है।
1: बिल्कुल, वहां पर जाने के बाद फिर वो जो हकीकत है जब वो अब जमाने के मुश्किलात को फेस करता है,
0: हाँ,
1: जब वो रियलिटी का सामना उसको होता है तो फिर उसके लिए फिर वो जिंदगी दूभर हो जाती है, बहुत से मुश्किलात उसमें आते हैं, इंसान नाकाम हो जाता है, उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है,
0: ये है
1: एंग्जायटी का शिकार,
0: हाँ, एंग्जायटी बहुत बढ़ रही है।
1: बाद इसके बाद जो है ये जो मुश्किलात उससे पैदा होती है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, बाद में जो है वो हद जो है, यानी यहाँ पे जो है वो पहुँच जाते हैं सुसाइड की हद तक लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि उस दुनिया में वो चीजें वो नहीं पा रहा है।
0: जाहिर सी बात है,
1: तो ये उसी शैतान के सजाई दुनिया का जो है वो एक नमूना,
0: वो तज़ईन जो किया उसने, ब्यूटीफाई किया। जैसे एक ब्लू वेल गेम आया था उसमें बाकायदा वो पूरी दुनिया में उसको बैन किया गया है, उसमें जो आपको असाइनमेंट्स मिलते थे उसमें था कि रेल की पटरी पे जाके लेट जाओ, जाके नौजवान लेट गया मर गया क्योंकि उसको ब्लू वेल गेम में यही असाइनमेंट मिला था। तो देखिए रियल वर्ल्ड ने कितना आपको पागल कर दिया है कि आप रियल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं।
1: Exactly.
0: ये शिनाख्त बहुत जरूरी है कि ये रियल है और ये रियल है, ये अगर नहीं, इसकी तशखीस नहीं है तो इंसान उसी दुनिया का होके रह जाता है। जैसा आपने फरमाया कि जो यहाँ जो इब्तिला और मुसीबतें और असाइनमेंट्स और परेशानियाँ और जो इम्तिहान की भट्टी से गुजारा ताकि पोटेंशियलिटी या कैपेबिलिटी उभर के आए वो बिल्कुल नहीं आ पाती।
1: बिल्कुल इस्लाम या यूं कहा जाए कि दीन का और अक्ल का जो वो सिस्टम है बिल्कुल वाजे है
0: जी।
1: आपको इस दुनिया में पैदा किया गया, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा किया
0: जी।
1: इस दुनिया में आपको अल्लाह ने सलाहियत देकर पैदा किया है, एबिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास जो है वो सोचने समझने की सलाहियत है। यहाँ पर ये दुनिया, यहाँ पर जो मन जद्दा वजादा, मौलाना शहनाज़ फरमाते हैं कि जो कोशिश करेगा वो पाएगा,
0: बेशक।
1: ठीक है, तो जो कोशिश कर रहा है, जो अपनी सलाहियतों का, अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है वो पाएगा, और ये हकीकत है। यहाँ पर मुश्किलात हैं, यहाँ पर आप उनको मुश्किलात को उबूर करके आपको एक दर्जा और एक मकाम तक पहुँचना है ज़िंदगी में, और कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो दारे भला है, यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप क्या कहते हैं मुश्किलात के बगैर अंजाम दें, चाहे वो आप क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज में जाइए, आपको पढ़ना पड़ेगा, मुश्किलात करना, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मेंस क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, आप जो है वो क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में जाएं तो वहां पर आपको नीट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा,
0: आप सख्त एग्जाम
1: जो भी, अगर आप इल्मे दीन में आए दर से खारिज पढ़ना पड़ेगा, आपको 14-15 उलूम के ऊपर उबूर हासिल करना पड़ेगा, फिर मर्जे तकलीद बनना पड़ेगा, और बहुत से मसाइल अगर देखें आप तो सोशल मीडिया या डिजिटल एडिक्शन जो है वो इंसान को हकीकत से और हकीकत हकायक से दूर करता है, जिसके नतीजे में ये सारी मुश्किलात जो मैंने अर्ज की, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सारी चीज़ें हैं। गेमिंग की बात हो रही थी, आपने जवानों की बात कर दी, ख्वातीन की बात यहाँ पे हो गई, हमें एक और बात मेरे जहन में आई, वो ये कि

0: को बहुत सी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि गेम्स की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं।
1: गेम्स की वजह से जैसे ख़वातीन पबजी खेल रही हैं। अब ये भाई हमने तो नौजवान लड़कों को देखा कि अपने महल्ले के बाहर चार पांच खड़े हुए हैं और एक साथ मोबाइल में, उनको खबर भी नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई टकरा रहा है क्या हो रहा है, और चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कस कस कह रहे हैं अरे भागो भागो यहाँ से बटो यहाँ से बचो पीछे से हमला हो रहा है। तो लोग उसे घूर घूर के दे रहे हैं ये क्या कर रहा है, उसको तो पता नहीं है, वो तो कान में लगाए हुए हेडफोन और चिल्ला रहा है चीख रहा है पूरे रास्ते वो ये करता चला रहा है। अब ये लड़कियों के अंदर भी एडिक्शन आया, उनके हिसाब से उनको उनके गेम्स डिज़ाइन किए जाएंगे, और वो भी जैसे आज आज की तरक्की आफ्ता दुनिया कहती है कि भाई जो लड़के कर रहे हैं वो लड़की भी कर सकती है, तो अगर लड़के ख़तरनाक आर्मी वाले या मिलिट्री वाले या वॉर वाले गेम खेल सकते हैं तो लड़की भी खेल सकती है और खेल रही हैं, वो भी मार काट धाड़ मारना काटना ब्लड बहाना इनको कत्ल करना उनको उनको उड़ा देना बम मार देना गोलियाँ क्लैशनकोव वो भी इस्तेमाल कर रही है। ये बच्ची के जो इतना ज़्यादा यानी जैसे वायलेंट गेम हाई डिग्री का खेल रही है, खुद उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होगा, डोमेस्टिक लाइफ बर्बाद होती है इससे, लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है। यानी वो एक फॉल्स आइडेंटिटी एक्वायर कर रही है कि अगर यानी वो इतना वायलेंस उसके अंदर भरा है कि वो उसको अमली दुनिया में फौरन सामने ला सकती है।
0: एक और मुश्किल है यहाँ पे शादीशुदा ख्वातीन हैं जो एक अरसे से अपने शौकसा ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इसी गेम की वजह से बहुत हमको रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि पबजी खेल रही हैं, पबजी के ज़रिए से
1: ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हुआ,
0: ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हो गया और शौहर को किसी एक मुल्क से छोड़ के आ गई यहाँ पे
1: हुआ है,
0: और एक नहीं कई कई केसेस जो है वो हुए हैं लोग जो हैं वो, बहरहाल ये सारे मुश्किल हैं
1: आएंगे। तो
0: डिजिटल एडिक्शन का जो एक नुकसान ये हुआ कि इंसान का वक्त बर्बाद होता है,
1: वक्त बिल्कुल बर्बाद हुआ,
0: इंसान की को डेवलप करने में उसको तरक्की कराने में वक्त का सही इस्तेमाल एक अहम चीज़ है,
1: बहुत अहम चीज़।
0: दूसरी चीज़ जो है वो उसके जहन के ऊपर असर पड़ता है, उसकी सोच के ऊपर फिक्र के ऊपर असर पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी शख्सियत के ऊपर असर पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कभी जो है वायलेंट हो जाती है, कभी जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाती है,
1: आइसोलेशन का शिकार है, तन्हाई पसंद हो जाता है, डिप्रेशन आता है,
0: और क्या मुश्किल हो सकते हैं जो कि आप स्टूडेंट से आपका रब्ता है।
1: देखिए जो जो जो मुझे ज़ाती तजर्बा हुआ है वो सबसे बड़ा ये है कि वो कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हम क्लास में ये बैठे हैं तो हमको अपना गेम याद आ रहा है, या हमको याद आ रहा है कि हमारे पास इंस्टाग्राम है हम वो रील नहीं देख पा रहे हैं। और मैं नौजवानों, क्योंकि नौजवानों के लिए प्रोग्राम है, इंस्टाग्राम ख़ास तौर पर आपको बेहयाई के बहुत मौके फराहम करता है, छोटी छोटी रील्स में भी आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपके अंदर इश्तेआल पैदा करती हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा चार्ज कर देती हैं, और जिसकी तरफ हम पता नहीं मैं इसकी इस पे बात कर सकता हूँ कि नहीं, इंसान जो है वो सेल्फ प्लेजर की तरफ घूमने लगता है, यानी अपने को मज़ा देना खुद, और वो एक नहायत ख़राब अमल है जिसको मग़रिबी दुनिया अच्छा दिखाती है मगर सारी रिसर्चेस बेकार हैं, क्योंकि वो भी अब तस्लीम करने पे आते हैं। इंसान की शख्सियत को बर्बाद करने में अपने को मज़ा देने वाले अमल बहुत ख़तरनाक पाए गए हैं। ऐसे बच्चे ऐसे नौजवान तन्हाई का शिकार होते हैं, किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पोर्ट्स उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपना कमरा चाहिए होता है, खुद तन्हा हो और इंटरनेट अवेलेबल हो। जैसे आप फहाशी की जो दुनिया है, जो पॉर्न इंडस्ट्री है, वो सॉफ्ट पॉर्न का एक वर्ड इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी में, यानी आपको वो हार्ड कोर नहीं दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि जिससे आपके अंदर वो तड़प और वो मैडनेस जो है धीरे धीरे इन्फ्यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से आप खुद अपने ऊपर काम करते हैं या मौका मिलता है। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस पर रिपोर्ट्स हैं कि इस्मत दरी और रेप केसेस का एक जिसे कहते हैं कि एक सर्ज हुआ है, तेजी से चीजें बढ़ी हैं, इनमें भी इस डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा रोल है।
0: यानी जैसे कहा जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप के कंटेंट देखकर इंसान, जाहिर सी बात है वो
1: जब वो इश्तेआल आता है, वो मवाल अंदर जा रहा है,
0: एक चीज देख रहा है, थ्योरी देख रहा है,
1: प्रैक्टिकल
0: प्रैक्टिकल के लिए जो जब उसको वो सही तरीका नहीं मिलेगा, सही जायज रास्ते से वो
1: नहीं मिलेगा,
0: क्या कहते हैं जिसे कहते हैं कि वो उसकी इर्ज़ा नहीं होगी, वो जाएगा क्या कहते हैं गलत रास्ते की तरफ, और अगर उससे भी उसमें भी अगर सामने वाला तस्लीम नहीं हो रहा है तो उसको फिर ज़बरदस्ती के साथ की जाएगी। तो ये रेप का जो चलन अब हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा,
1: हमारे यहाँ तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा केसेस
0: हो गए हैं केसेस, और उनमें से एक उसकी जो है वजह

0: सोशल मीडिया
1: ये
0: पे सॉफ्ट प्रो
1: सॉफ्ट पॉर्न
0: है।
1: देखने से होती है। और दूसरी आगा मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि एक और चीज चली है जो शैतानी हरबा है कि दोनों राजी थे, यानी कॉन्सेंशुअल सेक्स कहा जाता है
0: जी
1: इसे।
0: जी।
1: तो जब यानी ये कि वो सॉफ्ट देखने के बाद ये लड़का और लड़की दोनों बराबर से वो गंदा कंटेंट देख रहे हैं तो ज़हनियत दोनों की बर्बाद हो रही है, नफ्सियाती तौर पर वो सिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और ये दो बीमार लोग आपस में राजी होते हैं कि हम बगैर लेजिटिमेट वे के, शादी के बगैर भी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं वो तो सब समझ सकते हैं क्या
0: जी। अगर रिपोर्ट्स देखें हमारे, अगर यूरोप में आप देखें,
1: छोटे बच्चों में जब हो रहा है,
0: मैं यूरोप रिपोर्ट्स जो है वो बसंत में लिव इन रिलेशन में लोग आ जाते हैं और उसके बाद यह भी साल तब कंसेंशुअल जो है वो सेक्स होता है, उसके बाद रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद हैं,
1: बर्बाद हो रही।
0: और यूरोप इस वक्त, इस यूरोप और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मसाइल से जूझ रहा है। इवन वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो, यानी एक तरफ तो ये आज़ादी, जिनसी आज़ादी, और दूसरी तरफ आपकी खुद नाराज़ करें कि फेमिनिज्म ने इतना ज़्यादा ज़हनियत को ख़राब किया कि जिसके नतीजे में रिपोर्ट से कहती हैं कि अब वहाँ की ख़वातीन वापस पलट के आ रही हैं इस बात की तरफ और ये कह रही हैं, मुतालबा कर रही हैं कि हमको फैमिली चाहिए।
1: यस,
0: हमको जो है वो एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि जहाँ पर औलाद हो, जहाँ पर शौहर हो, जहाँ पर एक ऐसा घराना हो कि जहाँ पर हम खुशहाली के साथ रह सकें। बार उसमें इस चीज़ को ख़राब करने में सोशल मीडिया का और डिजिटल एडिक्शन का एक बहुत,
1: यानी आपकी बात से एक बात और करके आपकी तरफ आता हूँ कि इसकी एक और जो बुरा नतीजा ये निकला है कि डोमेस्टिक और फैमिली लाइफ बेहद मुतासर होती है डिजिटल एडिक्शन से।
0: डोमेस्टिक से याद आया कि डोमेस्टिक वायलेंस इसमें भी जो है वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है,
1: क्योंकि अग्रेशन वो सिखा रहा है ना।
0: जी, अग्रेशन वो सिखा रहा है, तशद्दुद वो सिखा रहा है। यहाँ तक बातें की हम लोगों ने, ज़ाहिरन हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए क्लियर हो गया होगा कि जो मुश्किलात हैं, उसकी जो मसाइल हैं। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मेहनत करने के बाद इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बनाई, ये सब के सब क्या नुकसान के लिए बनाई गई हैं या इसका फ़ायदा भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। देखिए, मुतलक इसको तर्क कर देना और इसको हराम कर देना वो अक्लन भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवान और हमारे सुनने वाले बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम चीज़ें जो होती हैं वो बजात खुद बुरी नहीं होती हैं, हम उनका इस्तेमाल और जहाँ से वो बुराई की तरफ आपको ले जाएं वहीं पे आपको अवेयरनेस के साथ उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी जितना आपके लिए मुफीद हो, आपके किरदार साजी में, आपको तरक्की देने में, आपको अच्छा इंसान बनाने में, आपकी इल्म में इजाफे के लिए, वो बेशक इस्तेमाल करें उसे, लेकिन जहां से वो आपको खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रही हो वहीं से अवेयर यूज उसका होना शुरू। यानी आपको उसका यूज अपनी अक्ल और खैरत और नफ्स को सामने रख कर करना चाहिए, उसके अंदर खोकर और उसके अंदर डूबकर उसका गुलाम बन के नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, खुदी कि हम ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हदफ क्या है और हमारी अपनी कद्र कीमत क्या है और ये हमारी कद्र कीमत को कैसे बढ़ा सकती है। अगर नहीं बढ़ा सकती है या इन्हितात या गिरावट की तरफ ले जाए, डिप्रेशन की तरफ ले जाए, डिग्रेड कर दे, तो हम यहीं से इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हमको इन्हितात की तरफ ले जा रही है, हमको डिग्रेड कर रही है, तो हम यहीं से अवेयर होकर फैसला लेंगे कि हम इसे यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे।
0: तो किस तरीके से कर सकते हैं, राय हल क्या है उसका?
1: राय हल ये है, सबसे पहला राय हल ये है कि एक नौजवान का ये समझना कि वो इस लत का शिकार हो गया है, और ये नौजवान जानता है, हर नौजवान इस बात को जानता है कि हम इस एडिक्शन के असीर हो गए हैं, हम पर असर हो रहा है, क्योंकि वो डांट खा रहा है ना घर में, उसकी स्टडीज़ में दिल लग रहा है, उसकी रिपोर्ट्स ख़राब हो रही हैं, उसकी फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो महदूद से महदूद तर होता चला जा रहा है, वो किसी बाहर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कम्युनिटी बिल्डिंग उसके लिए कुछ नहीं रह गई है, उसकी दुनिया है, उसका मोबाइल है, उसकी लैपटॉप है, उसका स्क्रीन है। तो वो लोगों से सुन रहा है ये बातें कि तुम कैसे हो गए हो, تم نہ ملتے ہو نہ جلتے ہو نہ تم آدم بیزار ہو چکے ہو، تمہارے اوپر کیا ہے یہ، اس کو کبھی کبھی وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہاں جا کے وہ اس کو ریوارڈ نہیں ملتا ہے، وہ گیم ہار رہا ہوتا ہے، یا وہ دیکھتے دیکھتے مائنڈ لیس اسکرالنگ جسے کہتے ہیں کرتے کرتے وہ تھک بھی جاتا ہے نا، ذہن کو فٹیگ ہوتا ہے، تب وہ سوچتا ہے کہ نہ اس کے ماں باپ اس سے اب اس کے پاس

0: पास हैं, क्योंकि वो खुद बहुत दूर हो चुका है। पहला जीना सेल्फ अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस कि हम इस एडिक्शन का शिकार हैं, और इसका एक्सेप्टेंस कि हम मरीज हैं, हम हैं बीमार। अब दूसरा ये है कि वक्त की कद्र, और वक्त क्योंकि अल्लाह की तरफ से अमानत है तो इस अमानत का ख्याल करना।
1: उसे कैसे समझाएंगे हम, यानी ये खाली उसी की जिम्मेदारी है?
0: नहीं, ये जिम्मेदारी अब माँ बाप की आती है। घर में जो बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, वो जब इस बच्चे को ऐसी चीज़ों में देखें तो उसके साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करें, खुद भी इन्वॉल्व ना रहें उसके सामने कि खुद भी मोबाइल देखे चले जा रहे हैं।
1: Exactly, और इसी पॉइंट की तरफ आपको लाना चाह रहा था।
0: ये हो रहा है सामने,
1: हमारी खुद हम लोग देखें, अगर
0: कहीं ना कहीं हम भी होते हैं, करते हैं,
1: जब मोबाइल देखते रहते हैं हम, और जब क्या कहते हैं तो हमारे बच्चे वो अपनी दुनिया में रहते हैं, माँ बाप जो है वो अपनी दुनिया में मसरूफ हैं। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सबसे पहली जिम्मेदारी ये है,
0: अग्री करता हूँ आपसे,
1: हम अवेयर हों, हम जो है वो अपने आप को इस एडिक्शन से पहले नजात
0: बाज रखें। हाँ।
1: उसके बाद, क्योंकि अगर हम निजात नहीं देंगे अपने आप को नहीं इस चीज़ से निकालेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो खराब होगा, और फिर जो मुश्किल आपको बताई सामने वो आएंगी। तो एक तो पहली जिम्मेदारी वालदैन की है, दूसरी जिम्मेदारी जो है वो खुद उसकी है, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए। वक्त का, अब एक स्टूडेंट, अक्लमंद स्टूडेंट जो है उसको हमें बावर कराना पड़ेगा, उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि तुम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो,
0: करो,
1: तुमको आगे कहाँ बनना, जो तुम्हारा टारगेट है उसको बताना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी के कुछ गोल है, तुम्हारी जिंदगी के कुछ टारगेट्स हैं, वहाँ उसको तुमको अचीव करना है। उसके लिए तुम्हें वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा,
0: जैसे आप काउंसलिंग कहते हैं, ये स्कूल लेवल पर और घर पे या मदरसे में जहाँ भी कहीं जाए, मेरा मशवरा यह है कि काउंसलर्स हर जगह रहें और बच्चों से डायलॉग करें। ऐसे बच्चे जो डिजिटल एडिक्शन का शिकार होते हैं वो बहुत तन्हाई पसंद हो जाते हैं, फिर वो डायलॉग नहीं करते जल्दी, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनकी स्पीच जो है वो मुख्तसर हो जाती है, क्योंकि जहन तो उनका डिजिटल दुनिया में लगा हुआ है। तो आपको उनको उभार के बाहर लाना है।
1: ठीक है, अभी देखिए सारी बातें हम लोगों ने की दुनियावी लिहाज से, दीन क्या कहता है इस सिलसिले में, कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है,
0: मजीद अगर आप बताएं तो। जैसे मैं सूरह मोमिनून की जो आयत है उसका मफहूम पेश करता हूँ कि मोमिनून, मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत यह है कि वो हर लगो चीज़ से दूर रहते हैं,
1: लगव से दूर,
0: जो भी हर चीज़ वो कि जो इंसान को जिक्र खुदा से, याद खुदा से, इंसानियत से, अच्छाइयों से दूर कर दे, वो किसी भी तरह का जो जैसे आप कहते हैं कि एडिक्शन है या उस तरह की बेराह रवि है, या दूर हो जाना कि जो खत मुस्तकीम है आपका, कि आप बंदे खुदा हैं, आपका रब है, उसका आप पर हक है, साथ साथ बंदगान खुदा का आपसे राबता है, रिश्ता है, उनका आप पर हक है। इससे जब इंसान दूर हो जाए, और वो अनिल लग्व मुअरिज़ून कुरान कह रहा है कि वो उससे एराज करे, वो उनसे अपने को दूर रखे जो भी चीज़ उसको नुकसान पहुंचा रही है।
1: बेशक, अभी आपने हक की बात की यहाँ पर कुदसी भाई जी, अगर दीन इस्लाम बहुत प्यारा दीन है, बहुत ही खूबसूरत दीन है,
0: बेशक
1: हुकूक़ की रियायत, इंसान का अपने ऊपर हक,
0: खुद अपने नफ्स पे हक,
1: अपने नफ्स के ऊपर, नफ्स जो अपने ऊपर हक, इंसान का अपने अज़ा व जवारे के ऊपर हक, और अज़ा व जवारे का खुद इंसान के ऊपर हक,
0: बेशक
1: ठीक है, वालदेन का हक एक दूसरे का के ऊपर, ठीक है, बच्चों का हक वालदेन के ऊपर, वालदेन का बच्चों के ऊपर, माशरे के ऊपर माशरे का, ये सारे हुकूक के ऊपर, और इन हुकूक की रियायत जो है वो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, बाज़ मौक़े के ऊपर ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो मुश्किलात आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं, इस वजह से आ रही हैं, लेकिन रवायात कहती हैं मुश्किलात जो तुम्हारे पर आ रही हैं वो हुकूक अदा न करने की वजह से आ रही है,
0: बिल्कुल है,
1: बाज़ मौक़े के ऊपर जो है वो हम खुद अपने ऊपर जो है जुल्म करते हैं और अपना हक मार देते हैं
0: जी,
1: और वो मुश्किलात हमारा जो है वो पीछा पकड़ लेती हैं। दुआए कुमैल बड़ी खूबसूरत
0: इब्तिदाई जुमले, क्या क्या जुमले
1: कि वहाँ पे आके दुआ हो रही करेंगे, ज़लम तो नफसी, ज़लम तो नफसी, परवरदिगार हमने अपना हक मारा है,
0: वतजर्रअतु
1: बियदी, और ये जुरात जो है वो मैंने खुद की है,
0: बेशक,
1: और मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। तो ये इन तमाम चीज़ों का जो कनेक्शन है वो खुद यहाँ पर आकर हमसे होता है,
0: हमसे होता है,
1: सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वक्त की बर्बादी, उसके असरात को अपने ऊपर लेना, ये इंसान को आगे बढ़ने से ये चीज़ें रोकती हैं,
0: बिल्कुल रोकती हैं।
1: उसी भाई आगे चले, वो जो हुकूक वाली बात चल रही थी भी हम डिस्कस कर रहे थे, जब
0: नफ्स वाली बात जो आई जी, تو وہ آغا بڑی اچھی بات آپ نے جو ہے وہ چھیڑی ہے, اور میں اس پہ اپنے سننے والوں کو امام سجاد علیہ السلام

0: आप जाएंगे और उसको चैनलाइज करेंगे वक्त को, तो आपको एडिक्शन से बाहर निकलने में आसानी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप बेकार बैठेंगे और आपका न कम्युनिटी से कोई ताल्लुक, ना माँ बाप के से ताल्लुक, ना भाई बहनों से ताल्लुक, तो वो जितना टाइम ये बच रहा है, ये शैतान आपको गलत राह पर ले जाएगा इस टाइम।
1: बेशक यहाँ पर मैं एक और चीज़ इजाफा कर दूँ
0: बिस्मिल्लाह
1: इजाज़त से, और ये कि यहाँ पर एक जवान को हमारी जिम्मेदारी है वालदैन के एतबार से, उलमा होने के एतबार से, रहनुमा होने के अतबार से, कि ये बताएं कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है, तुमको उस मकसद तक पहुंचना है और उसके लिए तुमको प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी
0: वही डायलॉग जो करना है आपको उसे जी।
1: दूसरी बात उसको ये बताना है, और ये हमारे जवान ख़ास तौर पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसें मेंबर ये जो है उसने इस हद तक बेदार कर रखा है हमारी कम्युनिटी को,
0: अभी ऐसी बातें हो रही हैं जी,
1: तो उसमें उसको ये बताना है कि तुम्हें कोई देख रहा है,
0: बेशक
1: तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई इमाम भी मौजूद है जिसके सामने तुम्हारे आमाल को पेश किया जाता है,
0: बेशक,
1: और तुम्हें जो काम करना है वो उसके लिए करना है, वो तुम्हारा इमाम जो तुम्हारे बुरे आमाल देखता है तो नाराज़ होता है,
0: रंजीदा होता है, बेशक, बेशक,
1: और तुम्हारे अच्छे काम के लिए उसको उसको तवक्को है, तुम्हारे जो आमाल हैं, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके आने और ना आने में असरअंदाज है।
0: सही,
1: हमारे इमाम हम कह रहे हैं अजील अला जहूरिक, लेकिन अजील अला जहूरिक में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, हमारे अमल का, हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम काम उसकी राह में करेंगे तो उनका आना, वो वक्त जो है वो नज़दीक आ जाएगा,
0: आ जाएगा,
1: और जितना ज़्यादा हम उस राह से दूर हटेंगे उतना ही उनके आने में
0: रुकावट और हिंड्रेंस आ रही, ताखीर हो रही जी।
1: लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि कोई भी काम हम करें इस बात को देख के करें कि हमारा इमाम हमारी तरफ जो है वो तवक्को लगाए हुए है कि तुम कुछ ऐसा करो कि हमारे आने का रास्ता और ज़मीना फराहम हो सके। बहुत ज़्यादा बातें बाकी थी भी, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वक्त हमारा तमाम हो गया है। इंशाल्लाह इसी किस्म के या इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए किसी और आलिम दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा
2: हाफिज़।
3: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.